0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर। ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में। फिल्म का नाम कभी कभी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।

चेहरा, ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा इस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई को।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं

है बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो ये कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों।

0: और सिनेमा की बातें।
1: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।

0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।

0: लाइक टू कंग्रेचुलेट फेडेक्स एंड दिल्ली जीएमआर एयरपोर्ट।
1: मैं फेडेक्स और दिल्ली जीएमआर एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
0: वी वॉन्ट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
2: एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना चश्मे व दूर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे,

25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे, इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: उपलब्धता वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने शुल्कमुक्त तत्वावर आयात केलेल्या साखरेची विक्री करण्याच्या कालावधीत केला बदल. बाजारातली कृत्रिम तेजी ओसरू लागल्याने राज्यात साखरेचे भाव नियंत्रणात. राज्याच्या लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी घेतली शपथ. आणि राज्यात आदिवासी वसतिगृहातल्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादेची अट रद्द. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं.
2: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना.
1: बिल्कुल. तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं.
2: प्रेरणादायी.
1: बिल्कुल. जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं.
2: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की. जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है.
1: बिल्कुल. और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं.
2: तो आज हेमलता अन्नामलाई जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी. और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था. उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी.
1: बिल्कुल. उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी. इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है.
2: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की. और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया.
1: बिल्कुल. और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है. यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे. ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई. बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला. और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है. बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया.
2: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है. इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया. उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो.
1: जी. और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए. किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे. और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए.
2: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना. हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं. जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था.
1: बिल्कुल. उनके सामने कई चुनौतियां थीं जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीकों स्वीकार करवाना.
2: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था. इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
1: बिल्कुल. अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है.

0: इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एम्पियर ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है।
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना।
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ।
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना।
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीदारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देख कर परख कर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है, जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं, वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं थे ऐसा कहकर फ्री में नहीं लाता।
1: बहुत अच्छी बात। सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज। वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती हैं। सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं, अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है।
0: और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई ला कर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है। मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है, अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कही। और एक और मैं श्रुतांशु लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरे सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं, उसे समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ और ही बनाना पड़ा है, यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा हल्की फुल्की बातों में। पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने इसी चीज को लिखा है वापस।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही,
1: नहीं नहीं नहीं आप पढ़िए।
0: एक एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है, और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं, मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारी एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोक झोंक की भारतीय परिवारों

0: के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
1: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नाप तुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना। आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूं ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूं।
0: अच्छा, और साथ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है। ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता। लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं। वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
1: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
0: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: तो आप किनका किनकी बात लेने जा रही हो
1: हाँ,
0: सनाली?
1: आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि

0: मैडम जी, तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी, एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथ ही कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज न मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना?
1: बिल्कुल,
0: डाइट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते हैं कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा। बिल्कुल, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है, कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी है।
1: सुनना है।

0: हाँ रानी साहिबा बताइए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है हाँ। कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है, तो रानी है ना वो।
0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते होते होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाएं, जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतने ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकिलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकिलिंग करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम, इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है यह विषय। हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों

0: सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
1: क्या बात है। एक साथी कहते, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है उन्होंने।
0: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पूरा
1: कॉकरोच हो जाएंगे,
0: कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
1: जी, एक साथी लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
0: बिल्कुल। और हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। जाने कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं, लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
1: एक साथी लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है, न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
0: वाह, इन्होंने गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
1: एक साथी लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं, फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
0: गीत सुनना है।
1: सुनते हैं गीत।

देखना तेज था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है, उनका कमेंट ले लेते हैं, जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का, जो पीतल के जो सामान होते थे, उनको हमने अच्छे से रख लिया है। तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है। ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं।
1: ये ना बहुत
0: हाँ
1: उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है
0: हाँ
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जो
1: रखना
0: बर्तन
1: भी
0: होते हैं पुराने
1: चाहिए।
0: दिए
1: और अब
0: होते।
1: तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें हैं ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे,
0: हाँ
1: बीच के जमाने में, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की चीजें
1: खासकर
0: हैं,
1: प्लास्टिक की
0: प्लास्टिक
1: थैलियां,
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक की
0: बिल्कुल भी आप
1: बोतलें,
0: बिल्कुल मत रखाइए।
1: रद्दी रद्दी के जो पेपर हैं, उसके
0: हाँ
1: बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे
0: हाँ
1: भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है।
0: बिल्कुल
1: तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं। लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी, लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल
1: यानी
0: दीजिए।
1: दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, घर भी साफ रहता है थोड़ा, जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है। आप खुद देखिए, अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि फिर सामान बढ़ा लिया, फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता और हम इन्हीं सभी कामों में उलझे
0: बिल्कुल
1: रहते
0: उन्हीं में
1: हैं।
0: लगे रह जाते हैं।
1: तो हमें इन सब बातों को
0: बिल्कुल
1: ध्यान देना
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ, ये तो बात बिल्कुल
0: ये बार
1: सही
0: बार
1: कही आपने
0: कहेंगे क्योंकि
1: कि
0: हम
1: जब हम
0: लोग
1: खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक

0: जाए जैसे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है।
1: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया,
0: समझाया,
1: वर्णन किया। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जिस तरह से बताया तो वही बताने उस बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने थे, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
0: बिल्कुल सही,
1: दुखों को नहीं। दुखों को ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
0: हाँ, तो आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो उसके बाद अगर मकान मालिक किराए लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है। कहते हैं कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का यह मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता है।
0: बिल्कुल, अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और
1: बल्कि मरहम का काम करें अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के। और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप
0: और विविध भारती सुनते रहिए। और हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थीं। तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है। वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
3: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
3: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
3: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
3: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
3: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी।
3: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की।
3: जी।
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
3: हाँ, ऐसे ही हमारा वही खेल वाली, हम भी खेलते थे वो। हाँ। सारी चीजें गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और
1: मिट्टी में
3: वो वाला। हाँ। वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी। हाँ। ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय?
3: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
1: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
3: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
3: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे उस सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ। हाँ। नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: इस तरह का
1: नैतिकता बहुत।
3: हाँ,
1: सिखाई
3: बहुत सिखाई जाती थी।
2: माँ बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
3: मेरे
1: कौन से गांव की बात है ये?
3: ये गांव के पास एक गांव है कासोदा, गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी?
3: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको। मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी। तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
3: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: है।
1: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
2: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
1: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं हमने सुना है गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, कमाल
1: जी। आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
2: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
1: जी।
2: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
1: जी।
2: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
1: बिल्कुल
2: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
1: जी। क्या
2: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
1: जी, जी जी।
2: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
1: जी,
2: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
1: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
0: राजपाल
1: राकेश देशमुख है, आपकी कैसी?
2: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी ऐसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया, बस हमको खड़े हो जाओ यहाँ पे, ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया बस खत्म।
1: अच्छा,
2: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वेराइटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी हैं, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल
1: जी। अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी, इन सब

0: सेक्टर।
1: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
0: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं। आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की,
2: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
2: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ड्यू करके किया। कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बुद्ध फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी और से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब। तो उन्होंने किया, फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
0: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए। बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
2: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं। अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमी तमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जाकर के वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन। मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे, अरे मैं कहा बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन।
0: क्या बात है,
2: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
0: क्या बात है, अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
2: याद है तुमको तुमने कहा था तुझे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी।

0: कसम वो इरादा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका?
2: इन्होंने मेरा बहुत बार दिल तोड़ा है।
1: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
2: हाँ, छह छह महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी। बहुत
3: अगर ये बोल रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन गाना कमाल है।
1: हाँ। नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए हमें यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
2: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये नापसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
1: पसंद तो शादी के पहले होता, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति।
2: नहीं नहीं, वो लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती उनके बारे में।
3: अब हम क्या उससे ऊपर उठ चुके हैं।
1: जी।
3: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए फिर दोबारा से प्यार हो गया।
1: अच्छा,
3: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
3: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा,
3: कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों को।
2: गई बात गई,
3: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं, अभी हम कितनी उम्र बची है इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के।
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
2: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर?
2: नहीं नहीं, ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज।
1: अच्छा,
2: घर में उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, बहुत।
2: मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
1: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
3: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें, मतलब मान लो एक कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसके कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना, ये बहुत बेकार।
1: सच बोल रहे हैं प्रतिभा जी? चलिए मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
2: यशपाल, तुमको कौन सा रंग पसंद है?
1: नहीं नहीं, आपको अपने से बताना है।
3: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
2: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की।

0: नहीं, इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था एनएसडी में, वो जो उसमें लगती थी ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
1: ओहो, क्या बात।
0: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक, मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप के, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
1: क्या बात।
0: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं है, रेडियो है कि जाते नहीं, रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ,
1: श्रोता सुन रहे हैं।
0: तो वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर, तो जो इसपे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो एनएसडी वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
2: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
1: आप गांठ रख लेती हैं मन में।
2: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी।
0: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
1: देखिए, यहाँ
0: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म, इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना।
0: अब तक 56 इज माय फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगाजल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल
1: की। जी जी,
0: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
1: जी,
0: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
2: उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
0: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था, नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है अभी, पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है, 5 साल लगे बनाने में।
1: क्या बात है,
0: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ।
1: जी आपने डायरेक्ट भी की है?
0: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
2: मुझसे आया था
1: जी,
0: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट, नाना पाटेकर की, उसमें कहानी थी, एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है, और वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देता
2: है मराठी का नट सम्राट।
0: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त, मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म। तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
1: जी जी,
0: पंडित लक्ष्मी चंद, तो फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी, तो फिर हमने उस पर फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में

0: पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है, गाने भी बहुत हैं। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया
1: जी,
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद
1: जी,
0: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन उसमें अभी आना है।
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा?
0: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहां की पुलिस शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मजेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहां पे शूटिंग की गई थी। तो वहां गए थे शूट करने, अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं?
1: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं, पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री,

0: फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और एआई फिल्में भी इस बार ऐड किया है
1: जी।
0: तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं। तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सिलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास। फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को,
1: जी,
0: जूरी को, कि आप फीचर

0: अब 3 दिन का हो गया है। तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
1: जी जी, बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
0: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, आईसी, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
1: जी जी जी जी,
0: हाँ उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया अच्छा रोल था, छोटा सा, वो एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
1: जी
0: उसका रोल था मेरा,
1: बिल्कुल।
0: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन। तो मैंने कहा चलो, तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूं, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं,
1: जी, जी।
0: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं। तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और ओपनिंग फिल्म, और
1: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
0: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
1: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया, और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
1: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतनी सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म आमो आंखा एक से, ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था, उस प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
1: क्या बात है,
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी 2-4 लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं, करते हैं, शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे, या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया, और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में।
1: जी,
2: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली,
1: जी जी,
2: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
0: लॉकडाउन था,
1: जी
2: लॉकडाउन था, और कहीं आप कर नहीं सकते थे, ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था, पहले 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पॉन्स ऑनलाइन में भी रहा,
1: और अब वेदा कुनवा में
2: ऑफकोर्स अब तो फिजिकली करते ही,
1: तो बहुत बढ़िया है, और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी हो सकते हैं,
2: बिल्कुल होना ही चाहिए।
1: प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है, जिसमें यशपाल जी भी,
2: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है,
1: अच्छा वो प्रोड्यूसर है, तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
2: नहीं नहीं, कभी नहीं मिला, हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
1: कोई रोल दे दो हमें भी ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों का नाम बताइए।
2: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
1: जी,
2: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है, है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि 2 ही एक्टर थे उसमें, और 2 ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है।

0: जी
1: नो
0: जी
1: एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
0: अच्छा क्या बात है।
1: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
0: अब एक गाना सुनते हैं फिर
1: हाँ
0: थोड़ी सी बातें और करते हैं
1: जी।
0: एक गाना बताइए कौन सा सुनवाए।
1: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी? उन्होंने
1: मैं इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफकोर्स मेरी बहुत ज्यादा और कुछ फिल्मों के नाम है और अब तक छप्पन और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये एक्टिंग?
1: हाँ, मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी। और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान प्रदान?
1: हाँ, मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का।
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देती है, सिखा देती ना कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब।
0: हाँ।
2: मैंने समझने की कोशिश बहुत की क्योंकि मैं ससुराल में जाता था, सब मराठी बोलते थे। इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी। फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे। इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो

0: कर दें। तो हुआ क्या कि ये एनएसडी में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ो, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया इस अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है। बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मैं बोला वो तेरा भला हो जाए, अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ो, और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है।
1: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला?
2: मैं तो सब मुझे
0: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ही प्यार से बस। बाकी मुझे कुछ क्या बोलते
2: नॉन रोमांटिक आदमी है।
0: हाँ एक नॉन रोमांटिक, बिल्कुल ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ है। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली। कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए, और मैं सोचू यार मैं तो मैंने तो जोक मारा था ये तो नाराजी हो गई। तो इसीलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
1: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही है।
0: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है, तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना मनी मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं। बिल्कुल
1: सही प्रतिभा जी, ऐसा
0: कभी कुछ होता नहीं
1: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती
2: नहीं, नहीं इतने भी शरीफ नहीं।
1: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता है कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते हैं और फिर हम भ्रम में रह जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
0: हाँ।
1: तो
0: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा जब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेट्री में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है।
1: और हमारा ही खाना हमारा ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा अच्छा। देख खा जाते थे।
0: तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है।
0: बना के खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल, कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी?
2: अच्छा, खिलाते हैं
0: जी जी। तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोता।
1: नहीं नहीं बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके हमने तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए और साइकिल,
0: अरे वाह क्या बात है,
1: आनी थी उस दिन। और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा और अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाएं, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी, तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू एक चीज, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
0: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
1: हम तो
0: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था।
1: हम तो 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों, आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
0: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो है एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके

0: हरियाणा से, हिसार से और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
1: मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हमने दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता। जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीजें आपके अंदर हैं। आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती है और हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास कर के हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
0: जी बिल्कुल,
1: करो मत, हो जाओ।
0: बिल्कुल। प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल।
2: और हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल के लुट जाने का इजहार हो ये जरूरी तो नहीं, ये तमाशा सरे बाजार हो ये जरूरी तो नहीं। मैं तुझे टूट कर चाहूं तो मेरी तरफ से, तू भी हो मेरा तलबगार ये जरूरी तो नहीं। ऐ सितमगर जरा झांक कर मेरी आंखों में देख, जुबां से हो प्यार का इजहार ये जरूरी तो नहीं। मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से हो कोई सरोकार ये जरूरी तो नहीं।

खातिर चलो ये माना मैं सब करूंगी, तुम्हारे सारे हुक्म सुनूंगी, मगर बताओ ना तुम ये कर सकोगे? किसी हसीना को राह चलते नहीं तकोगे, कोई पुरानी पड़ोसन मिले कहीं तो नहीं रुकोगे? मेरी सांसें, मेरी नींदे, मेरे इरादे सब तुम्हारे, मगर बताओ तुम्हारे दिन रात की लगन में मैं किस कदर हिस्सेदार ठहरी? तुम्हारी सांसें, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी ख्वाहिश में

जिंदगी में जो अबतरी है, ये तुम्हारा काम सारा जो दफ्तरी है, जो महीना चाहत का फरवरी है, क्या मुझको इन सब पे बरतरी है।

बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो। एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर। एक सर्द सा एहसास हुआ, वो एहसास तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चली फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया। मैं समझी तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी। मैं समझी तुम मुझे छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। आओ हम तुमको बताएं मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी को देखते ही धड़कनों में सुर बिखर जाएं, चमक आंखों की बढ़ जाए, किसी की याद में शामों सहर का फर्क मिट जाए, सुलगती रात कट जाए, तस्वुर से किसी की चांदनी रातें महक उठे, किसी के बिन जब सब कुछ अधूरा हो, न सूरज में तपिश बाकी रहे न चांद पूरा हो, ठहर जाए जो उस रुखे रोशन पर, पलटना भूल जाए दिल, किसी की दीद की खातिर जबी सजदे में झुक जाए, नजर जब आए तो बेसाख्ता कह दे जुबां,

कोई खुशबू हो, गुल हो या कोई रंगे हिना हो तो, कड़कती धूप में कोई अब्र या साया घना हो तो, किसी का साथ अपनी इब्तिदा वो इंतहा हो तो, कोई खुद दर्द हो, हम दर्द हो और खुद दवा भी हो, किसी का हाथ जब अपने लिए दस्ते शिफा भी हो, फिर ऐसे में ये सब एहसास सारी कैफियतें और सिलसिले मिलकर अनोखी शय बनाते हैं, जिसे कहते भी हैं, सुनते भी हैं और सब सुनाते हैं, मोहब्बत जिसको कहते हैं।

0: है।
1: सुनो जाने जा, अगस्त में तुम्हारी यादें दिल को चीर जाती हैं। ठंडी हवा से ना आशना शामे, सितारों से भरी रातें के जिनमें नींद की देवी भी उकताई सी लगती है। इसी बेकैफ मंजर में अचानक नीला आसमां बादलों की चादर ओढ़ लेता है, फिर ऐसे सावन बरसता है कि मंजर झूम उठता है। वही मौसम, वही रुत ओढ़े हुए दिन की बरसती शाम में जब हम तुम फिजा की गुनगुनाहट रूह में महसूस करते थे, कभी बूंदे पकड़ते कभी यूं मुस्कुराते थे कि जैसे कानों में बरसात ने कोई बात कह दी हो। वही मौसम, वही रुत, वही दिन रात हैं, फिजा भी गुनगुनाती है। न जाने तुम कहां पर हो, अब चले भी आओ, तुम्हें ये बारिश बुलाती है।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश

0: शामिल हैं।
1: आज दुनिया में होने वाले हर दो रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग एक भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi called the countrymen to share their UPI experience, and he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition, with the system now operational across 11 countries. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. National Security Advisor Ajit Doval today held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. Both Doval and Wang are the designated special representatives for the boundary talks mechanism, which was established in 2003 to comprehensively address the dispute of the India-China border

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: बरायतर मंडळी, कार्यक्रमात आता निरोप घ्यायची वेळ झाली आहे, पण जाता जाता एक नजर उद्याच्या कृषीविषयक कार्यक्रमांवर। उद्या सकाळी कृषी वार्ता हा कार्यक्रम, तर उद्या संध्याकाळी 7:30 माझं शेत माझा शिवार हा शेतीविषयक कार्यक्रम। तर आमच्या कृषीविषयक कार्यक्रमांचा अवश्य लाभ घेत राहा। आता मात्र कार्यक्रमात इथंच निरोप द्या। पुन्हा आपण भेटणार आहोत उद्या संध्याकाळी 7:30

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: इस दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो

0: किया अपने यूके मोबाइल से, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानु भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
2: यूपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया है 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
3: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
7: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू

0: करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड स्मिथ ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पैसे पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technology is developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Our correspondent reports that by bridging the digital divide, advancing financial inclusion and expanding access to digital financial services, UPI has empowered individuals and communities across the country while driving broad-based economic participation.
5: Today, one out of every two real-time digital payment transactions globally happens in India. As of 2025, UPI accounts for nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. Last month, over 23 billion transactions were recorded through UPI across the country. UPI has emerged as the backbone

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: आनंद जी। अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है?
2: जितने भी हमारे जिसे कहते हैं जोखिम है, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा, तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है। और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मानसून सीजन में देखने को मिलता है, या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो, तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी ये की गई है कि हम जो है, पहले होता क्या था कि वर्षा की फोरकास्ट शायद अच्छी नहीं थी या फिर किसान को पता नहीं चलता था और पता चला सूखा हुआ है और उनकी फसल खराब हो गई। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्या एक पूरा तंत्र बना हुआ है, रेनफॉल की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय में उसका पूर्वानुमान दिया जा रहा है। और पूर्वानुमान भी लगा है कि जैसे कि इस बार एल नीनो है तो मानसून की वर्षा सामान्य से कम होगी 10%, जैसा मौसम विभाग ने कह दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मालूम है कि वर्षा कम होने वाली है इस समय और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा डिलेड है, देर से ऑनसेट होगा मानसून में, तो वहां पे किस तरह की फसल लगेगी, किस तरह की तैयारी होगी। तो यदि आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस फोकस जो है, जो हमारा नया सिस्टम, उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला। दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे, कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना, उसको कम करना। और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने खासकर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक SOP बनी है किस तरह से कि जैसे ही मानसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है। और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है, जहां के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि भाई बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है। और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।
1: आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है। तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है?
2: देखिए, सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, पर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है। यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है, हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को हम सुधार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है। एक दूसरा, वहाँ पर किस तरह की फसलें लगाए जाए, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट। और तीसरा जो है वहाँ पर लाइफ सेविंग इरिगेशन, जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे, तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाए।

0: जाते थे और उनको रखरखाव किया जाता था और उससे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करने, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है। तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट आधारित खेती करते हैं और समय समय पे जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी मगर हम टैकल कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे।
1: अनुज जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीन स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है?
0: देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच को, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें। सही सीधी सी बात यह है कि देखिए, आपके पास तैयारी अच्छी है तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था। अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं। तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है, सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को, और प्लस इसमें भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है ICAR के अंदर, जिसके तहत भी इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं। तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहां पॉन्ड्स थे, आप टोपोशीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए। ये सब करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पर वार्निंग दे रहा है वो और सुदृढ़ होता जा रहा है। तो ये सब चीजें तो होंगी, अब ये हो गई, मगर कई बार ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा, ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा, तो वो खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए। ये सब हम करेंगे, अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज है, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है, और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती है जो कि किया जा सकता है। उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की, तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा।
1: अनंत जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक, और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गाँव में तालाब वगैरह भी हुआ करते। तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं समस्याओं के लिए?
0: बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी रिसर्च, यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा, यमुना में। सिमिलरली जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा। तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, ये आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉयल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो यमुना, सभी नदियों को, मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं। तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों को अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं, उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं, और जो तालाब है हमारे, आप देख लीजिए बेंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरे ख्याल 900 तालाब होते थे, मगर आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपोशूट से ढूंढिए कहाँ कहाँ थे तालाब, और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था, तो उन तालाबों को खोज रहे हैं और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपके तालाब से पानी भी मिल जाएगा आपको, जब खेती के लिए भी मिलेगा आपको, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल, और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर लेंगे, और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे।
1: अब पवन जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और

0: सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसे राहत भी इसमें शामिल हो जाती है, कई सारी चीजें हैं। तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कैसे परिस्थितियां बदल सकती है?
1: नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं, पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो है उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। अब वो पेड़ बचे तो पहाड़ बचे, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी। और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थिति हमेशा आती है नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपका फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है, जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का, वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास थे, उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए, तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया, फिर बाद में फिर पहल हुई ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको घास फॉडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सके। कई बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है, उसको फॉडर मिल रहा है, तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो बहुत जरूरी है।
0: आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं, ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है कि इस बार जो एलनीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एलनीनो इस बार आने वाला है और हो सकता है कि सुपर एलनीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है। और खासकर जो ये WMO जो है, वर्ल्ड मीटोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती हैं, और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती है या कोई अर्ली वार्निंग है, वो सारे देशों में शेयर की जाती है। और जैसा कि बताया, एलनीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए, जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें, और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो ये जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहां पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं, जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 बार वाइंड करिए, वो आप 1.5 घंटा चलेगा।
0: आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं, जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
1: देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, इवन फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है, और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों को हम नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी

0: चीजें मिलती है वो उसको खराब नहीं करेगी, तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ।
1: आनंद जी, चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: थोड्याच वेळात म्हणजे ठीक 11 वाजता हिंदी समाचार आणि 11:05 अंग्रेजी समाचार आम्ही दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया. बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है. प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके. भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए. 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की 1 दशक लंबी सफलता की सराहना की है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया. उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है. इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की. डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया. इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की. दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की. 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है. भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की. भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है. इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है. भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर